0: 来盘古巴，不买呀来盘古巴，来盘古巴，不买呀来盘古巴。सूचना संगीत और मनोरंजन को अटू साहिनो यूहू रेडियो साहिनो 99.8 मेगाहर्ट्ज
1: मैं
2: यंत्रों
1: से
2: तो
1: जंग जंग जंग जंग
2: ऐसे करना